0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: जी लिस्टनर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जनाब मोहम्मद अली दुरानी, और आज जो तकरीब थी जिसमें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जनाब तारिक इमाम के हवाले जो सीडी गई थी, जो लॉन्च की गई सीडी जिसमें इकबाल का कलाम है, इसका टाइटल अपना मुकाम पैदा कर, इसके हवाले से हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। السلام علیکم سر.
3: وعلیکم السلام.
14: جی سر, اس سی ڈی کے حوالے سے اور آج جو تقریب تھی, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
3: اقبال ڈے کے ریفرنس سے آج سی ڈی جاری کیا گیا ہے, جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کلام ہے اس کو نوجوانوں تک, اقبال کی سوچ کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ بہت عرصے بعد کلام اقبال کو دوبارہ جو ہے ایک نئے کے ساتھ جو ہے پیش کیا گیا ہے اور ایک نئے اپوزیشن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, انشاءاللہ یہ کافی جاری رہے گا.
14: ہم سر سے ان کا پیغام لیں گے, حضرت علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے, اس حوالے سے جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
3: میں سمجھتا ہوں کہ جی اہمیت جو ہے وہ اس ظاہر ہوتی ہے کہ شخصیت کا یوم پیدائش ہے, جن کے تصور کی بنیاد پر یہ ملک ہمارے وجود میں آیا, اور ایسی شخصیت جو پوری مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے, اور ایسی شخصیت جن کے کلام نے جو ہے پوری مسلم امہ کے اندر جو ہے ایک اعتماد اور ایک اپنی پہچان, ایک خودی اور ایک اعتماد پیدا کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دن اہم ہے اور ہماری کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس طرح سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. ہم سب جو ہے نہ صرف اقبال کے پیغام کو سمجھے بلکہ اس سے عملی رہنمائی بھی حاصل کریں.
13: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्के रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: It's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
12: on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.

You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

யா ரசூலல்லாஹ்.

0: You're listening to Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
1: अब जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये आपके और मेरे सबके दिल की आवाज है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
7: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
6: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
6: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
6: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
7: 07548419678।
6: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फगां और भी हैं. तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं. इसी रोज शब में

0: Mustafa. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम, मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैं मोत्रिस दी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मोत्रिस दी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कुबर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 124 लेन ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
10: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274 494 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 078.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
5: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
8: safewayrider.co.uk।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम, मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: saferaider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: active. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
4: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
4: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
4: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
3: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
2: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
2: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
2: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678।
2: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
6: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ कई नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ कई नशियात आप डेब प्लस पे भी सुनते हैं। जी हाँ, BFD एशियन रेडियो के नाम से आप हमें डेब पे भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं। करो जो बात करनी है, करो जो बात करनी है, अगर इस सांस पे बैठे के दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। करो जो बात करनी है, अगर इस आस पे बैठे के दुनिया बस हमें सुनने की खातिर गोश भर आवाज होकर बैठ जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। जमाना एक लोगों से भरा फुटपाथ है जिस पर किसी को एक लम्हे के लिए रुकना नहीं मिलता। बिठाओ लाख तुम पहरे तमाशा गाहे आलम से, गुजरती जाएगी खिलकत बिना देखे बिना ठहरे। जिसे तुम वक्त कहते हो धुंधलका सा कोई जैसे, जमीन से आसमां तक है ये कोई ख्वाब है जैसे, नहीं मालूम कि इस ख्वाब की मोहलत कहां तक है। करो जो बात करनी है। सामीन, अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन नाजर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की यथा गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज सुन रहे होंगे, अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। और सामीन, हमारी इस वक्त की नशियात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पे, और यही नशियात इस वक्त CV FM मिल्सबरा से 104.5 FM पे भी पेश की जा रही हैं। और सामीन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ देना चाहें, साथ निभाना चाहें, तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 ब्रेडफोर्ड 01274306677। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से, और गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी सामीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे आपकी नज़रों ने जब से हमें देखा। बहुत ही प्यारा क्लासिक सॉन्ग था और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जी सामीन, अगर आपको भी हमारे स्टूडियो में कॉल करना है तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306 और अगर आप हमें 3066677 और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल करनी है और हमारी लाइव कॉल में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारा कोड नंबर जरूर मिलाइएगा। बैरूने मुल्क के लिए स्पेशली है ये 00447800599563 पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें सुन भी रहे होंगे वाइल यू आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें सुनना चाह रहे हैं तो www.bradfordasianradio.co.uk पर भी आप हमें सुन सकते हैं। तो अब आपको एक अच्छा सा शेर सुना देते हैं। अपना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई मलाल रहा, अपना कोई शिकवा ना कोई गिला ना कोई मलाल रहा, सितम तेरे भी बेहिसाब रहे सबर मेरा भी कमाल रहा।
1: रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: एंड द विनर इज Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane, ब्रैडफोर्ड, PD95BR, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
8: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
6: 33 Wetland Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
8: saferaider.co.uk।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
10: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस।

0: लोग चाहे। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेस बैंक ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229627.
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस योर चॉइस। Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

जी सामिन, ब्रेक के बाद से एक बार फिर से आपको वेलकम है और इस वक्त तो खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने रंगे महफिल के प्रोग्राम में। जी शायदा, आपने हमें शेफील्ड से कॉल किया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें याद रखा और आपने हमारे स्टूडियो पे कॉल करके एक अपनी फरमाइश का गीत बताया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। उसके फौरन बाद ही शकील साहब, थैंक यू सो मच, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं बफर एजन रेडियो में और आपका भी गीत हम थोड़ी देर में लगा देंगे। और थैंक यू, आपने हमें याद किया और इस वक्त आप हमारे साथ हैं, सैयद हसन साहब आपके साथ हैं, सना खान आपके साथ हैं और आप सुन रहे हैं बफर एजन रेडियो 1430 AM पे। अगर आपको भी हमारे स्टूडियो पे कॉल करनी है तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677 पर।

0: जमीन आपको उम्मीद करती हूं ये गीत बहुत पसंद आया होगा और ये गीत है रुखसार साहब की फरमाइश है दिल गलती कर बैठा तो बोल हमारा क्या होगा
1: कफारा क्या होगा
0: बोल कफारा क्या होगा उसमें उसने बोला बोल हमारा क्या होगा जी थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो पे कॉल करने के लिए और अच्छा सा गीत पेश करने के लिए तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा अभी जो हमारी नेक्स्ट कॉलर ने जो हमें गीत की फरमाइश की है वो है तू धरती पे चाहे जहां भी रहे तो उम्मीद करती हूं कि आपको भी ये गीत बहुत पसंद आएगा
1: इस गीत के बाद हम चलेंगे ब्रेक
0: जी हम इसके बाद लाइव ब्रेक पे जाएंगे उसके बाद हमारा लाइव प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा आप हमें टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव पे और हमारे स्टूडियो पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर
2: जे तेरे खुशबू से पहचान लूंगा तू धरती पे जा
0: 02743667 पर

0: जी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
0: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
1: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 3066
6: and online. You're listening to Bradford Asian Radio on 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: पहुंचे। और एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें हमारी लाइव कॉल्स होती हैं, जिसमें आप सुनने वाले तशरीफ लाते हैं, कॉल्स करते हैं और इस महफिल को जीनत बख्शते हैं, रौनक बख्शते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी को होस्ट भी मौजूद है, सना जी। आप भी सुनने वालों से एक बार फिर जॉइन इन हो जाइए।
1: जी सामी, हमारे प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो चुका है। मैं हूँ आपकी होस्ट सना खान। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत रंगे महफिल अच्छा लग रहा होगा। और जी, हमारे लाइव कॉल का जो है वो स्टार्ट हो गया है। अगर आपको हमारे स्टूडियो पे कॉल करनी है तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर। तो इस वक्त हमारे साथ शकील साहब मौजूद है हमारी कॉल पे।
0: जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
2: जी वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब मोहतरम, क्या हाल है? ठीक है शकील साहब, आप
2: जी आवाज आ रही है?
0: जी जी परफेक्ट आपकी आवाज हमें आ रही है। आप खैरियत से ठीक है?
2: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं।
0: जी जी,
2: तो हमारे सना बहन को भी बहुत बहुत आदाब और अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत आदाब।
2: मीर साहब है, अली भाई है, चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब है, इकबाल भाई हैं, महबूब भाई हैं, सादिया बहन है,
0: अरे
2: और भी शफीक भाई, सबको जितना सुनने वाले हैं सबको मैं तस से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
2: वालेकुम अस्सलाम, तो ये शुजा फरखी है, इनकी गजल है
0: शुजा फरखी। जी जी, इनायत कीजिए।
2: मिटाने अहले हक को झूठ के लश्कर निकल आए,
0: मिटाने हक को झूठ के लश्कर निकल आए,
2: उजालों के मुकाबले रात के मंजर निकल आए।
0: क्या कहने, उजालों के मुकाबले रात के मंजर निकल आए, बहुत खूब।
2: हमारे हुक्मरान को किस घड़ी इंसाफ की सूझी,
0: आहा हमारे हुक्मरान को किस घड़ी इंसाफ की सूझी,
2: के दरिया जब किनारे तोड़ कर बाहर निकल आए।
0: क्या कहने की, दरिया जब किनारे तोड़ कर बाहर निकल आए, बहुत खूब। ये शेर फिर से पढ़िएगा शकील साहब, बहुत ही अच्छा।
2: शुक्रिया। मैं खुद को दोस्तों के दरमियान महसूस करता था,
0: मैं खुद को दोस्तों के दरमियान महसूस करता था,
2: मगर जब शब हुई चारों तरफ खंजर निकल आए,
0: मगर जब शब हुई चारों तरफ खंजर निकल आए, बहुत ही प्यारा शेर है, वाह वाह क्या कहने।
2: लहू होकर हमें उम्मीद थी फूलों के खिलने की,
0: लहू होकर हमें उम्मीद थी फूलों के खिलने की,
2: मगर मिट्टी से फूलों की जगह पत्थर निकल आए।
0: क्या कहने, मुझे वो शेर अक्सर याद आ जाता है कि तुमने इस मिट्टी में इंसानों के सर बोए हैं, तुमने इस मिट्टी में इंसानों के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा। जनाब,
2: नमू की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी,
0: नमू की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी,
2: हवा ने छू लिया जिसको उसी के पर निकल आए।
0: क्या कहने, लाजवाब है, फिर से पढ़िएगा, वाह वाह।
2: नमू की रुत तुम्हारे शहर में सबके लिए कब थी?
0: आहा,
2: हवा ने छू लिया जिसको उसी के पर निकल आए।
0: कहते ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको मिली जुबान तो हम ही पे बरस पड़े।
2: माशाल्लाह। आखिरी शेर कहते हैं, मसीहा जिनको समझा था मेरी सादा मिजाजी ने,
0: मसीहा जिनको समझा था मेरी सादा मिजाजी ने, वाह वश्किल
2: साहब। उन्हीं की आस्तीन से देखिए खंजर निकल आए,
0: उन्हीं की आस्तीन से देखिए खंजर निकल आए, क्या कहने शकील साहब, वाह वाह। आप अक्सर उनके सुनाया करते हैं रशीद हसरत के। जी जी, अच्छे होते हैं हमेशा। जी जी,
2: कुछ नहीं पाया है हमने इस भरे संसार में,
0: कुछ नहीं पाया है हमने इस भरे संसार में,
2: फूलों से दामन है खाली गर्चे हैं गुलजार में।
0: बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को।
2: ते कहते हैं, जायकों से उनके हमको कुछ नहीं है इन्हराफ, सबसे मीठा फल है लेकिन सब्र सब आसमार में।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: हम गली कूचों में तो दावा करें तहजीब का,
0: हम गली कूचों में तो दावा करें तहजीब का,
2: और अपने घर रखें माँ बाप को आजार में।
0: क्या कहने, और रखें, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने।
2: हम गली कूचों में तो दावा करें तहजीब का, और अपने घर रखे माँ बाप को आधार में।
0: वाह वाह, क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है।
2: क्या ही अच्छा होता कि हम करते किसी नुक्ते पे बात।
0: हाँ हाँ, क्या ही अच्छा होता कि हम करते किसी नुक्ते पे बात।
2: हम दुकानदारी लगाने में फकत तकरार में।
0: बहुत खूब, बहुत
2: लगाते हैं फकत
0: तकरार में। बहुत अच्छे,
2: शुक्रिया। कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है।
0: कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है।
2: आज हाजिर हो नहीं पाए अगर दरबार में।
0: क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है लाजवाब है। फिर से पढ़िए गई ये शेर।
2: कल तुम्हारे पांव चाटेंगे हमारा काम है, आज हाजिर हो नहीं पाए अगर दरबार में।
0: और मुझे यहाँ ब्रेडफुट की एक लोकल शायरा थी, उनका वो शेर याद आ जाता है कि तुम जिसे रानमा बनाओगे, तुम जिसे रानमा बनाओगे वो हमारा ही नक्शबा होगा।
2: माशाल्लाह
0: जी जी।
2: फिर कहते हैं, एक वफा को छोड़कर तस्वीर में सब कुछ मिला।
0: एक वफा छोड़कर तस्वीर में सब कुछ मिला।
2: ए मसवर, रह गई बस एक कमी शाहकार में।
0: क्या कहने क्या कहने, लाजवाब है।
2: जिसकी मर्जी जब जहां जैसी भी मनमानी करे।
0: वाह वाह,
2: एक जरा सा कम भी कहां बाकी रहा सरकार में।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
2: क्या हकीकत पूछते हो, जिंदगी एक जबर है।
0: क्या हकीकत पूछते हो, जिंदगी एक जबर है।
2: दर्द बनकर खून बहता है तेरे फनकार का।
0: बहुत खूब बहुत खूब, शुक्रिया।
2: तो आखिरी शेर कहते हैं, वो जिसकी खातिर सबसे ताल्लुक तोड़ा था रशीद।
0: वाह वाह,
2: वो जिसकी खातिर सबसे ताल्लुक तोड़ा था रशीद, लो चला है वो भी हमको छोड़कर अगियार में।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
2: शुक्रिया। तो बड़ी मेहरबानी, टाइम
0: बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और तशरीफ लाते रहिएगा। अल्लाह और जी सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे जनाब शकील साहब, हमेशा की तरह आज भी लाजवाब इंतखाब के साथ तशरीफ लाए थे। और हमेशा हम दाद दिए बगैर नहीं रह सकते कि जो भी ये लाते हैं बड़े मुंतखब कलाम के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और महफिल को चार चांद लगाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तरन भी मौजूद हैं और आप को भी हम खुश आमदेद कहते हैं। सना भी हैं, तरन भी हैं और हम सारे मिलजुल के एक आपके लिए भरपूर महफिल पेश कर रहे हैं। जरा सा तरन को भी ऑनलाइन लेके आइएगा जी। जी तरन, आप क्या सुनाओगी जरा, आपको भी हम लाइव लाते हैं ना टिकटॉक पे आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। आप खैरियत से ठीक है?
3: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे?
0: अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत सब ठीक ठाक। और जी और देखते हैं कि तरन हमें आज क्या सुनाएंगी, या फिर आप ये वाला कैमरा आप लगा लीजिए, ये वाला स्टैंड।

0: और सामिन, ये खूबसूरत गीत तो चल रहा है और चलता भी रहेगा, लेकिन उससे भी खूबसूरत हमारे सुनने वाले हैं जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। चश्मे रोशन दिले माशा, बा कमाल लाजवाब, बो ताला बा इज्जत बा वकार बा ज़ौक बा शौक, हर दिल अज़ीज़ बहुत नफीस बहुत लतीफ़ बहुत शफीक और काबिल अज़मत काबिल रिफ़त नहत काबिल रिस्पेक्ट जनाब मोहतरम हसन शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब वाला क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से आप?
1: जी हजूर, आप कैसे हैं? अच्छे, तबीयत कैसी है, मजाज ग्रामी कैसे?
0: अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत सब ठीक ठाक। और आप सुनाइए, आपके मैनचेस्टर का क्या हाल है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे है और ठीक ठाक है जनाब, फिट फाट है।
0: फिट फाट है मैनचेस्टर, क्या कहने मैनचेस्टर के।
1: सही है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो माशाल्लाह आपको और माशाल्लाह आपके साथ जो विराजमान हस्तियां हैं माशाल्लाह मेरे लिए नायत काबिल इज्जत काबिल एहतराम और काबिल अजमत हैं मेरे लिए, और जनाब मोहतरमा सना साहबा हैं और जनाब मोहतरमा तरन साहबा है, उन दोनों हस्तियों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा चाहत भरा उल्फत भरा तिबत भरा नायत मोहब्बत नायत चाहत और नायत उनसे जनाब एक पहले तो एक छोटा सा जोक लेके आया हूँ, अब सैयद राब ऐसे तो है नहीं वरना उनको सुना देता, अगर जा तो सुना दूं आपको।
0: जी जी इनायत इनायत कीजिए।
1: एक वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है,
0: फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है। अच्छा जोक सुना रहे हैं, फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है। अच्छा
1: हस्बैंड बोलता है कि जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट होगी,
0: हाँ हाँ,
1: और तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मेरी लाइफ फिनिश होगी।
0: क्या कहने क्या कहने क्या कहने, जबरदस्त है जबरदस्त है, अच्छा है अच्छा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके जितने भी सामईन है सभी को अपनी मान में रखे, अल्लाह ताला किसी का मुताज ना करे और सभी को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता फरमाए। तो ये छोटी सी पोएट्री लेके आया हूँ मैं आपके और माशाल्लाह तमाम सुनने वालों की गुजार करना हूँ, और माशाल्लाह हमारे बहुत ही काबिल एहतराम काबिल इज्जत माशाल्लाह मोहतरम शकील साहब आए थे और अपने मखसूस अंदाज में, कहते हैं कि उनका अंदाज भी निराला होता है और उनका इंतखाब भी जो होता है लाजवाब होता है।
0: वो शायद फराज ने इन्हीं के लिए कहा था ना कि मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या
0: शकील साहब के लिए
1: जनाब मोहतरम शकील साहब, तो कहते हैं ना वो किसी तारफ के मुताज ही नहीं है के हाल, उनका तारफ कराना भी जो होता है ना वो यकीन करे कि हमारे जैसे छोटे बंदे के वो इख्तियार भी नहीं है।
0: इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, वो बहार की हवा है।
1: क्या कहने क्या कहने, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात को अल्लाह ताला ऐसी हस्तियों को अल्लाह ताला सदा सलामत रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी पाक फरमाए।
0: आमीन आमीन।
1: तो ये क्योंकि ये लोग और आप जैसी माशाल्लाह हस्तियां ये उस्तादों में शुमार होती हैं, बल्कि उस्तादों के उस्ताद के हाले
0: सलामत रहे।
1: तो ये छोटी सी पोएट्री है जनाब
0: जी, जी।
1: शायर लिखता है कोई मानूस मंजर आ गया है,
0: कोई मानूस मंजर आ गया है,
1: गली के मोड़ पर घर आ गया है।
0: क्या कहने क्या कहने, फिर से पढ़िएगा।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बतें हैं। कोई मानूस मंजर आ गया है, गली के मोड़ पर घर आ गया।
0: वो कहते हैं ना कि सुनता नहीं है कोई भी मेरी पुकार को, दस्तक बदल गई कि मेरा घर बदल गया।
1: लाजवाब, क्या कहने क्या कहने, मैं खुद को भूल आया था वहां पर,
0: मैं खुद को भूल आया था वहां पर,
1: मुझे वो साथ लेकर आ गया है।
0: क्या कहने, मुझे वो साथ लेकर आ गया है, बहुत खूब बहुत खूब।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मुझे एक कुर्राए गम की तलब थी,
0: मुझे एक कुर्राए गम की तलब थी,
1: मेरे आगे समंदर आ गया है।
0: बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, अपनी जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह।
1: सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब लाजवाब। शेर है एक जनाब
0: जी जी,
1: तुम्हारे हाथ में है दीदा ओ दिल,
0: तुम्हारे हाथ में है दीदा ओ दिल,
1: तुम्हारे पांव में सर आ गया है।
0: क्या कहने, लाजवाब है, बहुत खूब।
1: थैंक यू सर, आखिरी शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ।
0: عنایت.
1: وہاں کوتا تھا اکرام تجھ سے,
0: کیا کہنے,
1: یہاں تیرے برابر آ گیا ہے.
0: بہت خوب, بہت خوب, لاجواب.
1: تھینک یو چاچا, بہت شکریہ ٹائم دینے کا,
0: بہت شکریہ, اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور تشریف لاتے رہیے گا.
1: تھینک یو سر, بہت شکریہ, خدا حافظ,
0: اللہ حافظ. اور جی ہاں سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی محترم اور قابل صد احترام رخسار چودھری صاحب مینچسٹر سے, جن عزتوں سے, محبتوں سے, چاہتوں سے ہمیں نوازتے ہیں, اس کے لیے ہم ان کے بے حد ممنون ہیں. اور اب ترن ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور لگتا ہے کہ آج یہ بھی کچھ کمال کرنے جا رہی ہیں. کیا خیال ہے سنا, کمال کریں گی نا؟
2: کیا لے کر
0: آئی ہیں؟ جی جی ذرا انہیں بھی,
2: ہمارے لیے آج کیا لے کر آئی
3: ہیں؟ میرے پاس ایک پنجابی,
0: میں نے سوچا کہہ رہی ہوں میں ایک سوٹ لے کے
3: ہسن والی گلتے بھی ہس نہیں سکیا ڈردا میں.
0: بہت خوب,
2: بہت اچھے, بہت ہارٹ ٹچنگ.
3: قسمت لٹن آئی سی کردا تے کی کردا میں,
0: قسمت لٹن آئی سی کردا تے کی کردا میں. بہت خوب.
3: سارے پانڈے, سارے پانڈے خالی نے, ہوکا وی نہیں پردا میں.
0: بہت خوب, بہت خوب.
3: خود مریا واں تیرے تے,
0: خود مریا تیرے تے,
3: خود مریا واں تیرے تے, تے تو نہیں سمجھدا میں.
0: بہت اچھے, بہت اچھے, کیا کہنے, کیا کہنے,
2: بہت اچھے.
0: جی جی, اور کچھ اور بھی سنائیے ہمارے پاس.
3: ویسے نا میری اردو کی تھوڑی سی مزاق بنتا ہے ہر بار,
0: لیکن بہت اچھا آپ پڑھ رہی ہو, کیوں آپ ایسے سنتی ہیں؟
3: لیکن اس بار سناؤں گی.
0: جی جی,
3: کسی شام مجھے بھی یاد کر لیا کرو.
0: واہ واہ,
3: میرے میں دوست پرانا ہی صحیح مگر زندہ ہوں.
0: بہت اچھے,
2: کیا بات, کیا بات,
0: کیا کہنا,
2: کیا
0: کہنا.
3: اور اسی کے ساتھ پروین سکیر کہتی ہے, تم نے کہا تھا کہ ہر شام تیرا حال پوچھیں گے, تم نے کہا تھا کہ ہر شام تمہارا حال پوچھیں گے, تم بدل گئے ہو جہاں تمہارے شہر میں شام ہی نہیں ہوتی.
0: بہت اچھے, بہت اچھے, کیا کہنے.
3: آئی تھنک مجھے اردو میں شاعری نہیں کرنی چاہیے.
0: کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے ہم سب سیکھ رہے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم سبھی سیکھتے ہیں, اچھا لگتا ہے. جی آپ بھی کچھ سنائیے.
2: میں سناؤں گی آپ کو بہت ہی پیاری سی غزل. دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے.
0: واہ واہ,
2: دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے, اپنے احساس کو خاموش بنایا ہم نے,
0: اپنے احساس کو خاموش بنایا ہم نے.
2: تیری یادوں نے کئی خواب سجائے دل میں, پھر بھی ہر درد کو ہنس کر ہی نبھایا ہم نے.
0: بہت خوب, بہت.
2: راہ الفت میں کبھی دھوپ کبھی چھاؤں ملی, ہر قدم صبر کا چراغ جلایا ہم نے.
0: بہت خوب.
2: وقت بدلا تو کئی لوگ بدلتے دیکھے, اپنا کردار مگر خوب بچایا ہم نے.
0: بہت اچھے.
2: آج بھی دل میں امیدوں کا دیا روشن ہے, ہر اندھیرے کو محبت سے مٹایا ہم نے.
0: بہت خوب, دیکھا,
2: دل کی باتوں کو زمانے سے چھپایا ہم نے.
0: کیا
3: کہ بہت پیارا, بہت پیارا.
2: ہمارے ساتھ ہیر بھی موجود ہے اس وقت.
0: ہیر کو ہم تھوڑی دیر بعد بریک کے بعد لیں گے, تاکہ پھر
2: لائف پہ ہیر ہمارے ساتھ, آپ بریک پہ جائیں.

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and...

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आवाज करेंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। और अब लाइन पे हमारे साथ टिकटॉक की महफिल में हमारे जितने भी साथी हैं सभी को खुश आमदेद कहते हैं। बताइए कौन कौन से हैं इस वक्त
1: जी? इस वक्त हमारे साथ जी मौजूद हैं हमारी प्यारी सी हीर फ्रांस से। अस्सलाम वालेकुम हीर, कैसी हैं आप?
0: आपको आवाज आ रही है? अल्लाह का एहसान है, सब खैर।
1: उसी के साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी कॉलर मौजूद है सुंदस।
0: सुंदस आपको भी खुश आमदेद कहते हैं हम।
2: सुंदस थैंक यू सो मच,
0: खुश आमदेद, वेलकम आज की इस बस में। और अगले हमारे कौन से मेहमान हैं
1: जी? हमारा नेक्स्ट कॉलर है बहुत ही प्यारे से हमारे हैं कॉलर्स हैं AMK, शी इज वेरी क्यूट DP के थ्रू पे, और वो उन्होंने पहली बार हमें ज्वाइन किया आज,
0: उन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं।
1: उसी के साथ हमारे अनदर कॉलर हैं अब्दुल्ला जी UAE से। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो को ज्वाइन करने के लिए और हमारे टिकटॉक लाइव को ज्वाइन करने के लिए।
0: तो अब हम यूं करते हैं कि सबसे पहले हमारे जो भी आप में से जो भी पहले बोलेगा वो पहले आ जाएगा, यूं करते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए।
1: चलें जी, अब बताएं कौन पहले आना चाहेगा।
0: मुझे लगता है कि सुंदस की आवाज सबसे ज्यादा है,
1: एंट्री मारेंगे,
0: सुंदस से एंट्री मारेंगे सबसे पहले। जी सुंदस।
2: नहीं मैं पुराने कॉलर सुना इसलिए।
1: हाँ चलें मेरी जान, आप सब हमारे लिए बराबर है, तो प्लीज इशाद कीजिए, प्लीज आ जाइए,
0: सुनाइए आज, देखते हैं क्या सुनाते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत ही सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: कहते हैं आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो।
0: आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो।
2: आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते ना कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है।
1: क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इससे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अब भी ओझल है निगाहों से निशाने मंजिल। अब भी ओझल है निगाहों से निशाने मंजिल। जिंदगी तू ही बता कितना सफर बाकी है।
2: क्या कहने
0: जी जी,
1: इन बहुत अच्छे।
2: एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों।
0: एक ही नदी के हैं
2: ये दो किनारे दोस्तों। दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो।
1: क्या कहने,
0: क्या कहने, लाजवाब है, लाजवाब।
2: आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कोच का ऐलान होने को है, तैयारी रखो।
0: बहुत खूब,
2: ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे।
0: ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे।
2: नींद रखो या ना रखो, म्यारी रखो।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने।
2: ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का बदन।
0: वाह वाह,
2: ये हवाएं उड़ ना जाएं लेके कागज का बदन। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो।
0: क्या कहने, मुझे मोहसिन नकवी का वो शेर याद आ जाता है कि हमें हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है। हमें हर दौर की गर्दिश ने सलामी दी है। हम वो पत्थर है जो हर दौर में भारी निकले।
2: क्या बात, ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियां। क्या जरूरी है कि लहजे को भी बाजारी रखो।
0: क्या,
1: क्या बात,
0: राहत अंदोरी खूबसूरत।
2: आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी
0: रखो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी जी। और भी कोई गजल है तो सुना दीजिए, हमारे पास वक्त है।
2: तुझे जिंदगी का शऊर था,
0: तेरा क्या बना,
2: क्या बना।
0: हसन अब्बास रजा की है। वाह वाह
2: जी जी
0: जी जी।
2: तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना। तू खामोश क्यों है मुझे बता, तेरा क्या बना।
0: मुझे इससे वो फिल्मी डाला याद है जब तक कालिया तेरा क्या बनेगा।
2: ओ तेरा की बना हुए। नई मंजिलों की तलाश थी सो बिछड़ गए।
0: वाह वाह,
2: मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया,
0: तेरा क्या बना,
2: तेरा क्या बना।
0: न जाने वो डाला क्यों बार बार जब भी आपके।
2: अच्छा मैं इसको ना फिर चेंज कर देता। वैसे वो आप अक्सर मुझे कहते हैं ना, वो अपनी रवायत को मत छोड़ो
0: जी जी,
2: क्या करें, अपनी रवायत पूरी करें।
0: मुझे याद है ये आपकी रवायत है तो इसी के मुताबिक चलें। आप जी जी आप जारी रखें अपनी गजल।
2: मैं जारी रखूं
0: जी जी
2: हेलो चले इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना।
0: जी जी होल्ड करें।
2: दरिया के किनारे तो नहीं होते ना।
1: बहुत अच्छा।
0: वाह वाह क्या कहने क्या कहने।
2: रंजिशे हिजर का म्यार घटा देती है।
0: रंजिशे हिजर का म्यार घटा देती है। वाह वाह।
2: रोज जाने से गुजारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत खूब बहुत खूब
2: शुक्रिया। रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को।
0: रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को।
2: वो भी अर्शों से उतारे तो नहीं होते ना।
0: क्या कहने लाजवाब है। वाह वाह।
2: होठ सीने से कहां बात छुपी रहती है।
0: वाह वाह।
2: बंद आंखों से इशारे तो नहीं होते ना।
0: क्या कहने क्या कहने।
2: हिजर तो और मोहब्बत को बढ़ा देता है।
0: वाह वाह।
2: अब मोहब्बत में खिसारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत अच्छे।
2: एक शख्स ही होता है मताए जान भी। एक शख्स ही होता है मताए जा भी। दिल में अब लोग भी सारे तो नहीं होते।
0: क्या कहने इसे फिर से पढ़िएगा। कहते हैं ना कि निगाहें उस पे पड़ती हैं कि जिससे कुछ ताल्लुक हो। निगाहें उस पे पड़ती हैं कि जिससे कुछ ताल्लुक हो। मोहब्बत की नजर से हर बशर देखा नहीं जाता। क्या कहने।
2: एक शख्स ही होता है मताए जा भी। दिल में अब लोग भी सारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत अच्छे।
2: इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना।
1: क्या बात है।
2: दरिया के किनारे तो नहीं होते ना।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तशरीफ लाते रहिएगा। महफिल में जैन रहे हैं। हो सकता है दोबारा आपको एक बार फिर चाय की प्याली के लिए दावत दें।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो आप हमारे साथ
1: नेक्स्ट हमारे साथ है हीर। हीर प्लीज
0: हीर आ जाइए
1: प्लीज।
3: अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर आप सबको।
0: वालेकुम अस्सलाम। आपको खुश आमदेद कहते हैं आज के रंगे महफिल में।
3: बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं कि दिल है उदास चुप है सितारों की जिंदगी।
0: वाह वाह। दिल है उदास चुप है।
3: दिल है उदास चुप है सितारों की जिंदगी। आ जाओ बन के दर्द के मारों की जिंदगी।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए फोन के पास आ जाइए। आपकी आवाज थोड़ी सी कम है। जी जी जी जी
3: ओके ओके मैं देखती हूँ। हाँ जी चलिए मैं। अब
0: परफेक्ट
1: है। अब परफेक्ट है।
3: दिल है उदास चुप है सितारों की जिंदगी।
0: वाह वाह।
3: आ जाओ बन के दर्द के मारों की जिंदगी।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
3: फूलों की दिलकशी हो के तारों की जिंदगी।
0: फूलों की दिलकशी हो के तारों की जिंदगी।
3: दिलकशी हो के तारों की जिंदगी। तेरी तेरी नजर है कितने नजारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब क्या कहने क्या कहने।
3: रस्ते हूँ बेचिराग तो कुछ सोचता नहीं।
0: रस्ते हूँ बेचारा
3: तो कुछ सोचता नहीं। यूं ही गुजर रही है हजारों की जिंदगी।
0: बहुत अच्छे क्या कहने।
3: जज्बे हवस के पलते हैं सामान्य ऐश में।
0: वाह वाह क्या कहने।
3: जज्बे हवस के पलते हैं सामान्य ऐश में। बढ़ती है खारो खस में शरारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब बहुत
1: अच्छे।
3: लफ्जों में आ सकेगी वो तर्ज अदा कहाँ।
0: लफ्जों में आ सकेगी
3: लफ्जों में आ सकेगी वो तर्ज अदा कहाँ। एक खामोशी हजार इशारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब क्या कहें।
3: देखो तो जुल्मतों में फरोजा है कुछ चराग।
0: देखो तो जुल्मतों में फरोजा है कुछ
3: जुल्मतों में फरोजा है कुछ चराग। समझौता तो एक प्याम है तारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब।
3: जलवे भी चाहते हैं मुकाबिल रहे कोई।
0: जलवे
3: भी चाहते हैं मुकाबिल रहे कोई। नजरे ना हो तो क्या है नजारों की जिंदगी।
0: बहुत खूब बहुत खूब। ये शेर लाजवाब है। फिर से पढ़िएगा। वाह वाह।
3: जलवे भी चाहते हैं मुकाबिल रहे कोई। नजरे ना हो तो क्या है नजारों की जिंदगी।
1: बहुत खूब बहुत अच्छे।
3: दुनिया तो गैराते मुसलसल का नाम है।
0: दुनिया
3: तो गैराते मुसलसल का नाम है। कितनी कितनी सुबक है वक्त के
0: धारों की जिंदगी। क्या कहें।
3: उससे तो लाख दर्जा खजा में सकून था। उससे तो लाख दर्जा खजा में सकून था। नासूर बन गई है बहारों की जिंदगी।
0: लाजवाब है। बहुत खूब।
3: इल्जाम ये है क्यों ना रहे आस पास में, इल्जाम ये है कि क्यों ना रहे आस पास हमसे, खफा खफा है सहारों की जिंदगी,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
3: जुल्मत भी नूर है दिले रोशन सौदा को,
0: वाह
3: जुल्मत भी नूर है दिले रोशन सवाद को, शब में कुछ और होती है तारों की जिंदगी,
0: बहुत खूब बहुत,
3: चर्चे गली गली सही फसले बहार के, चर्चे गली गली सही फसले बहार के, तेरे बगैर क्या है बहारों की जिंदगी,
0: क्या कहने क्या कहने,
1: बहुत अच्छे
0: कहते ना कि चुभती है कल्बो जामे सितारों की रोशनी, चुभती है कल्बो जामे सितारों की रोशनी, ए चांद डूब जाके तबीयत उदास है,
3: अरे अरे अरे क्या कहने हैं, बहुत खूब जी बहुत
1: जी। तो फिर अभी हम देते हैं टाइम आई डोंट केयर को, अब्दुल्ला जी अगर आप हमारे साथ स्टिल मौजूद हैं तो
0: जी, हम लाइव लेते हैं,
1: हाँ जी, और हीर तो हमारे साथ लास्ट मिनट तक,
0: हीर आपने हमारे साथ ही रहना है
1: जी। अब्दुल्ला जी आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं?
4: जी बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए, बेडफोर्ड एशियन रेडियो का
1: आपको खुश आमदीद कहते हैं, बेडफोर्ड एशियन रेडियो में
4: शायर चेंज कर दिया मैंने,
0: जी जी अच्छा किया
1: जी,
4: फरमाते हैं कि इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता,
0: इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता,
4: कुछ कर नहीं सकता, मैं पेशवर फिर भी हूँ मोहब्बत कर नहीं सकता,
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कहते हैं ना कि इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, इरादे बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए,
4: ना हो जाए, बहुत अच्छे, और बुरे हो या कि अच्छे हो मुझे इससे नहीं मतलब,
0: बुरे हो या कि अच्छे हो मुझे इससे नहीं मतलब,
4: नहीं मतलब मुझे, मतलब से मतलब है मैं तुमसे लड़ नहीं सकता,
0: बहुत खूब बहुत खूब लाजवाब,
4: बहुत शुक्रिया, और यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहता है,
0: यहाँ हर शख्स
4: खुदा भी, जी बिल्कुल
0: जी,
4: खुदा भी वो कि जो अपनी ही झोली भर नहीं सकता,
0: बहुत बहुत खुँ, बहुत खुँ, क्या ही खूबसूरत शेर है, वाह वाह वाह, फिर से पढ़िएगा ये, अच्छा है,
4: शुक्रिया, और यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहता है, और खुदा भी वो कि जो अपनी ही झोली भर नहीं सकता,
0: बहुत खूब, कहते ना कि खुद जिनकी हथेली में हूँ सो राख हजारों, खुद जिनकी हथेली में हूँ सो राख हजारों, वो देना भी चाहे तो क्या देंगे किसी को,
4: बिल्कुल बहुत खूब, और मैं तुमसे साफ कहता हूँ, मैं तुमसे साफ कहता हूँ मुझे तुमसे नहीं उल्फत,
0: मैं तुमसे साफ कहता हूँ मुझे तुमसे नहीं उल्फत,
4: नहीं उल्फत, फकत लफ्जी मोहब्बत है, मैं तुम पे मर नहीं सकता,
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने, कहते हैं ना कि चाहत हो मोहब्बत हो कोई गम हो के खुशी हो, चाहत हो मोहब्बत हो कोई गम हो के खुशी हो, हम कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं रखते, और नहीं रखते तो हैं हम और भी कुछ काम जरूरी, लेकिन तेरी चाहत से ज्यादा नहीं रखते,
4: नहीं रखते बिल्कुल, और तुम्हारी बात सुन ली है बहुत दुखी कहानी है,
0: वाह वाह क्या कहने,
4: सुनो तुम बाद में आना अभी कुछ कर नहीं सकता,
0: कर नहीं सकता, बहुत खूब,
4: और मोहब्बत की मुसाफत ने बहुत जख्मी किया मुझको, अभी ये जख्म भरने हैं, मैं आहें भर नहीं सकता,
0: लाजवाब बहुत
4: बहुत शुक्रिया, और सनम तेरी मोहब्बत ने मुझे नफरत सिखाई है,
0: वाह वाह,
4: मगर अब अजनबी हो तुम, मैं नफरत कर नहीं सकता,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
4: बहुत शुक्रिया, और भले भले मैंने नहीं चाहा मगर तुमने तो चाहा है,
0: वाह वाह,
4: तुम्हारी याद को दिल से तो बाहर कर नहीं सकता,
1: बहुत अच्छे
4: और बहुत शुक्रिया, और न जाने आदमी क्यों आदमी से खौफ खाता है,
0: न जाने आदमी क्यों आदमी से खौफ खाता है,
4: खौफ खाता है जो अपने रब से डरता हो किसी से डर नहीं सकता,
0: क्या कहने, जो अपने रब से डरता हो किसी से डर नहीं सकता,
4: डर नहीं सकता, बहुत शुक्रिया, और गौर कीजिएगा, अरे ओ इश्क, अरे ओ इश्क चल जा काम कर किसको बुलाता है,
0: हाँ हाँ हाँ क्या मिस रहा है, वाह वाह, अरे ओ इश्क जा काम कर, वाह वाह,
4: हाँ अरे इश्क जा काम कर किसको बुलाता है,
0: बुलाता है,
4: हुस्न बाजार में बिकता है सूली चढ़ नहीं सकता,
0: बहुत बहुत लाजवाब है, लाजवाब है, बहुत
4: शुक्रिया, और यहाँ हर एक चेहरे पर अलग तहरीर लिखी है,
0: यहाँ हर एक चेहरे पे अलग तहरीर लिखी है,
4: यहाँ हर एक चेहरे पर अलग तहरीर लिखी है, मेरी मेरी आंखों में आंसू है, अभी कुछ पढ़ नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने,
4: बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी रात की जुल्फों में खुद चांदी सजाता हूँ।
0: मैं अपनी रात की जुल्फों में खुद,
4: मेरी मेरी आंखों में आंसू है, अभी कुछ पढ़ नहीं सकता।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने,
4: बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी

0: सर गौर कीजिएगा
1: जी राय।
0: कि भले झूठा मुनाफिक हूँ, बहुत धोखे दिए लेकिन
1: हाँ, क्या मित्र है, वाह
0: भले
1: वाह।
0: झूठा मुनाफिक हूँ, बहुत धोखे दिए लेकिन मेरा कुछ वक्त बाकी है, जमीन में गड़ नहीं सकता।
1: क्या कहने, एक खास हस्ती के नाम ही शेर हम करते हैं। फिर से
0: बहुत
1: पढ़िएगा बाबा, फिर
0: अच्छा,
1: से पढ़िएगा,
0: भले
1: ये शेर बहुत अच्छा
0: झूठा
1: है।
0: मुनाफिक
1: हाँ
0: हूँ,
1: हाँ
0: बहुत धोखे दिए,
1: बिल्कुल
0: मेरा कुछ वक्त बाकी
1: बाकी
0: है,
1: है,
0: जमीन में गड़ नहीं
1: इंशाल्लाह
0: सकता।
1: वो वक्त आ जाएगा। बहुत जल्दी
0: मैं गौर कीजिएगा फिर से, मैं
1: जी
0: उस घर का मुकीमी हूँ जिसे औकात कहते
1: जी
0: हैं,
1: वाह वाह, क्या कह रहे
0: मैं उस घर का मुकीमी हूँ जिसे औकात कहते
1: हैं।
0: हैं, मैं अपनी हद में रहता हूँ सो आगे बढ़ नहीं सकता।
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: बहुत
1: जा
0: शुक्रिया। और खुदा हूँ न वली हूँ मैं,
1: वाह
0: फकत रिंदे अली हूँ मैं।
1: वाह, क्या मिस्रा है, वाह वाह।
0: बहुत शुक्रिया। खुदा हूँ न वली हूँ मैं, फकत रिंदे अली हूँ मैं कुछ भी दे नहीं सकता, मैं कुछ भी कर नहीं
1: बहुत
0: सकता।
1: अच्छे बहुत अच्छे।
0: बहुत
1: गमों की
0: शुक्रिया।
1: धूप में
0: और
1: रास्ता बना के चलता हूं, गमों की भीड़ में रास्ता बना के चलता हूं, अली की आल हूं, सर को उठा के चलता हूं।
0: हाय हाय हाय
1: बहुत
0: हाय।
1: अच्छे,
0: और शेर आखिर है कि अली कुछ शेर रहते हैं मगर लिखने नहीं हरगिज,
1: वाह वाह, क्या मिस्रा है,
0: अली कुछ शेर हैं रहते हैं मगर लिखने
1: लिखने
0: नहीं
1: नहीं।
0: हरगिज, किसी की लाज रखनी है सो जाहिर कर नहीं सकता,
1: बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि
0: किसी की लाज रखनी है सो जाहिर कर नहीं सकता।
1: अशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं, अशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए।
0: बहुत अच्छे, क्या
1: जनाब
0: कहना है,
1: जी,
0: बहुत शुक्रिया जी।
1: बहुत शुक्रिया आपका, अदा करते हैं। लाइन पे ही रहिएगा, अभी हमारी महफिल में शरीक रहिएगा, हमारे पास तकरीबन 5-7 मिनट
2: जी
1: हैं।
2: हमारे साथ नेक्स्ट हमारी हैं AMK जी। अस्सलाम वालेकुम AMK, आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं।
1: जी
3: जी जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
1: वालेकुम
2: अस्सलाम,
1: अस्सलाम।
2: आपने
1: खुश
2: हमें कहाँ से ज्वाइन किया?
3: जी, मैं मलेशिया में हूँ इस वक्त।
1: मलेशिया से आप हैं और आपको खुश आमदेद कहते हैं। वहां पे इस वक्त वक्त क्या होगा?
3: जी, इस वक्त रात के 4:50
1: रात के 4:45 बजे कमोबेश। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली बार आप आई हैं, आपको खुश आमदेद कहते हैं हम
2: जी।
1: रंगे महफिल में।
3: बहुत शुक्रिया
1: जी।
3: जी, मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी।
1: इनायत कीजिए जी। जी,
3: हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे,
1: हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे। फराज की खूबसूरत गजल है, वाह वाह
3: जी। हर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे,
1: आहा
3: इसको सैराब करे वो किसे
1: प्यासा
3: प्यासा
1: रखे। क्या कहने, क्या कहने फराज की।
3: उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना,
1: वाह वाह।
3: उम्र भर
1: कौन
3: कौन निभाता है
1: ताल्लुक
3: ताल्लुक
1: इतना,
3: इतना, ए मेरी जान के दुश्मन तुझे
1: तुझे
3: अल्लाह
1: अल्लाह
3: रखे।
1: रखे, क्या
2: क्या
1: कहने।
2: बात,
1: फिर से पढ़िएगा ये खूबसूरत चेहरा इस गजल का।
3: जी,
1: जी,
3: उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक
1: ताल्लुक
3: इतना,
1: इतना,
3: ए मेरी जान के दुश्मन तुझे
1: तुझे अल्लाह।
3: अल्लाह रखे।
1: और मुझे मोहसिन नकवी का वो शेर इससे याद आ जाता है कि उम्र इतनी तो अता कर मेरे फन को खालिक, उम्र इतनी तो अता कर मेरे फन को खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरस दे।
3: वाह जी, हमको अच्छा नहीं लगता
1: कोई
3: कोई हम नाम
1: हम
3: तेरा,
1: नाम तेरा खूबसूरत है, वाह वाह।
3: हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो
1: अगर
3: फिर
1: हो
3: नाम भी
1: कुछ
3: तुझसा
1: सा
3: रखे।
1: रखे, क्या कहने। कहते हैं ना कि नामों का एक हजूम सही दिल के आसपास, नामों का एक हजूम सही दिल के आसपास, दिल एक नाम सुन के धड़कता जरूर है।
3: वाह जी वाह, दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है,
1: वाह वाह।
3: दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबस्ता है,
2: क्या
3: जो
2: बात
3: किसी
2: है,
3: और का होने दे ना
1: ना
3: अपना
1: अपना
3: रखे।
1: रखे, क्या कहने। कहते हैं ना कि उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही ना हो, उसको दरपर्दा कहीं हमसे मोहब्बत ही ना हो, जो किसी और को हमारा नहीं होने देता।
3: वाह जी,
1: जी जी इनायत की
3: कम नहीं तमाए इबादत भी तो हिर से जर से,
1: आहा।
3: कम नहीं तमाए इबादत भी तो हिर से जर से, फुकर तो वो है कि जो दीन ना
1: ना दुनिया
3: दुनिया रखे।
1: रखे, क्या कहने।
2: क्या बात
1: कहते
2: है?
1: ना कि वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, वादा मुआवजे का न करता खुदा अगर, खैरात भी सखी से न मिलती फकीर को।
3: वाह जी बात,
1: जी।
3: हंसना इतना भी फकीरों के अकेले पन
1: पन पर,
3: पर,
1: वाह वाह।
3: हंसना इतना भी फकीरों के अकेले पन पर, जा खुदा मेरी तरह
1: तुझको
3: तुझ भी तन्हा रखे।
1: क्या कहने,
2: क्या
1: क्या कहने।
2: बात
1: कहते ना कि तेरे होते हुए आ जाती थी दुनिया सारी, ये भी फराज कही है कि तेरे होते हुए आ जाता

0: थी दुनिया सारी, आज तनहा हूं तो कोई नहीं आने वाला।
1: जबरदस्त। ये कनात है अतात है कि चाहत है फराज,
0: वाह
1: ये
0: वाह।
1: कनात है अतात है या चाहत है फराज, हम तो राजी हैं वो
0: मुझे
1: जिस
0: हाल
1: हाल में
0: में
1: जैसा
0: जैसा
1: रखे।
0: रखे, यारब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, यारब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे।
1: वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा
0: बहुत
1: लगा
0: अच्छा
1: आपसे
0: लगा।
1: मुझे
0: आपका नाम
1: साथ।
0: जान सकते हैं?
1: एमके जी, मेरा नाम एमके
0: एमके। ठीक है, चलिए जैसे आप मुनासिब
1: जी
0: समझे।
1: एमके, आप हमें साथ ज्वाइन कीजिएगा सैटरडे पे भी हमारे
0: सैटरडे को
1: प्रोग्राम
0: भी
1: में।
0: आइएगा
1: जी
0: जरूर, इसी
1: बिल्कुल,
0: वक्त
1: जरूर
0: जी,
1: आइएगा।
0: सैटरडे और
1: इंशाल्लाह
0: वेंसडे को हमारा
1: इंशाल्लाह,
0: रंगे महफिल होता है, तो जरूर
1: सलामत
0: तशरीफ
1: रहें,
0: लाइए।
1: खुश रहें।
0: बहुत खुशी हुई आपसे
1: बहुत
0: बात करके।
1: शुक्रिया आपका,
0: सलामत रहे, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह
1: अल्लाह
0: अल्लाह।
1: हाफिज। जी,
0: और
1: हमारे पास नेक्स्ट कौन आएगी? हीर, कुछ है अच्छा सा?
0: जी हीर,
1: हीर, अपना माइक ओपन जी
0: कर
1: जी
0: लें,
1: बिल्कुल, जी जी बिल्कुल।
0: आ जाए मेरी
1: हमारे साथ
0: जान।
1: कुछ और भी।
0: कहते
1: हैं कि सलीके से अगर तोड़े तो कांटे टूट जाते हैं,
0: सलीके से अगर तोड़े तो कांटे।
1: सलीके
0: आहा,
1: टूट जाते हैं, मगर अफसोस ये है फूल पहले टूट जाते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: मोहब्बत बोझ बनकर ही भले रहती हो कांधों पर,
0: जी, बात खूब,
1: मोहब्बत बोझ बनकर ही बने रहती हो कांधों
0: कांधे
1: पर,
0: पे।
1: मगर मगर ये बोझ हटता है तो कांधे टूट जाते हैं।
0: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और सलीम भी हमारे साथ में।

0: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
1: Bradford Asian Radio ke samein ki khidmat mein Hisam Muqaddam ka aadab. 1413 AM pe and online. आपकी खिदमत में गुलदस्ता प्रोग्राम लिए हम हाजिर हैं. इसी तरह एशियन रेडियो लाइव भी आपका साथ दुनिया भर के सामईन के साथ दे रहा है. प्यार, दोस्ती, इश्क, मोहब्बत रूप हैं एक ही अक्स के. वो अक्स जो आलम हस्ती को बदल देता.
2: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है.
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा. मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं. मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे.
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR. टेलीफोन 07885428349. अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड.
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे.
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स.
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ. बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN. बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है.
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए. आज ही तशरीफ लाइए. ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA. फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन.
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह

फिल्म आखिर क्यों के इस गीत के बाद जिसे लता जी गा रही थी, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ताना से लिया गया ए नगमा, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत तरतीब दिया है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffield Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैनिंगो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी

0: Mukaddam with Ghazals Qawwalis. Classical music on Asian Radio Live. Every day at 8 a.m. and 3 p.m. and also Saturday at 7 p.m.
1: Ab peshe film do raste se ek hi tha. Ise bhi Anand Bakshi ne likha hai. न जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाऊं, न जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाऊं, मैं बन के आंसू खुद अपनी नजर से गिर जाऊं, तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं. गा रहे हैं किशोर कुमार और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274301555

0: 667 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो प्लीज कॉल आवर सेल्स टीम ऑन 01274306677।

टच के बाद आइए सुनते हैं अनवर की आवाज में। तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, उजाला मिल सके तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा। तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। फिल्म जनता हवलदार से राजेश रोशन की धुन, मजरूह सुल्तान।

आवाज भी अभी आपने फिल्म जनता हवलदार से नगमा सुना, एशियन रेडियो लाइव ग्लोबल चैनल से। गुलजस्ता प्रोग्राम में हिसाम मुकद्दम से पेश कर रहे हैं। हमसे रابطہ कायम करना हो तो बाखुशी ईमेल कीजिएगा hisam@asianradiolive.com। अब पेश खिदमत है एक नायाब गीत, गजल मुन्नी बेगम की आवाज में, चाहत में क्या दुनियादारी।

अपनी बेगम के बाद अब पेशे ऐसी दूरी भला क्या कि जुदा हो जाओ, तुम मेरे कांपते होंठों की दुआ हो जाओ, मेरी खामोश इबादत पे भरोसा कर लो, तुम मेरे दिल मेरी चाहत पे भरोसा कर लो। मना दे साहब अपनी मखसूस क्लासिकी अंदाज में।

0: This is Asian Radio Live, Guldasta with Hisam Mukaddam.
1: आइए एक बार फिर फिल्म कुर्बानी से मनर उदास और कंचन की आवाज में एक गीत सुनते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं इसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता मुझे।
2: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
10: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
10: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
8: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
8: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर और

दोस्तों बारी है श्रेया घोषल की। फिल्म का नाम है देवदास, लिरिक्स नुसरत बद्र की है और संगीत बख्शा है इस्माइल दरबार ने। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बूझने दिया

का पेशे एस एच बिहारी का कलाम, ओपी नैयर की धुन। फिल्म का नाम है कहीं दिन कहीं रात। गा रहे हैं महेंद्र कपूर, तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो।

तुर पुर नूर महफिल में गा रही उसकी चाहत की चांदनी होगी, उसकी चाहत की चांदनी होगी, खूबसूरत सी जिंदगी होगी।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज.uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

0: Classical music on Asian Radio Live. Every day at 8 a.m. and 3 p.m. And also Saturday at 7 p.m.
1: Maine ek phool jo seene pe saja rakha tha uske parde mein tumhe dil se laga rakha tha tha juda sabse mere ishq ka andaaz suno meri aawaaz suno pyar ka raaz suno film Nandihal se kaifi aazmi ka kalam मदन मोहन की धुन और मोहम्मद रफी की आवाज. इसके बाद पेश खदमत है राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया. Pankaj Udhas Saab.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

आइए सुनते हैं जनाब अनूप जलोटा की आवाज। कह रहे हैं, जो फरेब मैंने खाए थे तुझे राजदान समझकर, जो फरेब मैंने खाए थे तुझे राजदान समझकर, उन्हें कैसे भूल जाऊं एक दास्तां समझकर।

अपन नदीम का कलाम उन्हीं के संगीत में रचा। हुए बेचैन पहली बार रब ने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक के बन जाता है दीवाना। एक हसीना थी एक दीवाना था फिल्म से ये नगमा लिया गया है। और इसी खूबसूरत गीत के साथ ही हिसा मुकद्दम आप तमामों से इजाजत चाहते हैं अगली मुलाकात तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस। अपना ख्याल रखिएगा यार, जिंदा सोहबत बाकी। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 30

0: It's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे

0: being heard on the radio.
1: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
2: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
4: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच, द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
4: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
5: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
8: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
9: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पे ऑटोमेटिक डबल बेड, 600 बॉक्स, जर्मन वॉल ड्रॉप।
0: You're listening to Rez Khan

0: Ifat Hamid
1: on Bradford Asian Radio.
2: जहाँ पे यूँ ही नहीं बनी हुई है, दिल में और दर्द में ठनी हुई है, यूँ ही रोशन नहीं हुआ चेहरा, कोई तब्दीली बातनी हुई है, अब फलक आ गया है पांव तले, अब सरों पे जमी तनी हुई है, अब कहीं इश्क ने किया है करम, अब तबीयत कहीं गनी हुई है, चंद शाखों के काट देने से छाँव कुछ और भी घनी हुई है, एक शक्ल एक नाम एक कलाम ऐसे आसान जान कुनी हुई है, 100 बरस से झुकी हुई थी ए दोस्त आज गर्दन अगर तनी हुई है। इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ सामईन आपकी खिदमत में आप ही की मेजबान इफ़त हमीद हाजिर है प्रोग्राम रंग तरंग लेकर। अस्सलाम वालेकुम। रंग तरंग प्रोग्राम आप एशियन रेडियो
3: ब्रैडफोर्ड नंबर वन एशियन कम्युनिटी रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk This is Bradford Asian Radio.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal
4: business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising.

0: Pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
3: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
2: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
5: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
5: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
5: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
6: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

आंखों में गुंचा हाय नवाजिश निचोड़ कर, आंखों में गुंचा हाय नवाजिश निचोड़ कर, मेरे दिले शिकस्ता को नरमी से जोड़ कर, होंठों पे नीम मौजे तबस्सुम को तोड़ कर, मेरी तरफ खफीफ सा गर्दन को मोड़ कर, कल सुबह रास्ते में सुहानी हया के साथ उसने मुझे सलाम किया कि सदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ यही नशियात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk। जी हाँ, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशियात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और फिर जब चाहें जहां चाहें आप हमें सुन सकते हैं। और सामीन, अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन हाजिर हैं, और अपने सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले जहां कहीं भी इस वक्त हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारी ये नशियात सुन रहे होंगे, आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से बाखैर वाफियत होंगे। और अगर खुदा न खास्ता आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, तो हमारी बहुत सी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं कि आप जहां रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और ब्रेड फाउंडेशन रेडियो सुनते रहें। जो भी इस वक्त हमें टिकटॉक पे

0: साथी ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे इल्तमास है कि आप डबल टैप कर लीजिए ताकि आप हमारी इस महफिल में शामिल हो सकें। और साथियों, अब यूं करते हैं कि अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से, और गीत करेंगे आप सभी सुनने वालों के नाम। और आपको बताते चलें कि हमारी ये जो नशात होती हैं आप ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में सुनते हैं 1430 AM पर। इसके साथ साथ दुनिया भर में आप हमें वेबसाइट के जरिए सुन सकते हैं, www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और वेब के साथ साथ कई नशात आप डेब पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेब प्लस पे आप हमें ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सुन सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉइड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं। और अब दरअसल हमारी अगली ब्रेक बिल्कुल पास है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी आपके लिए हम कोई गीत पेश ना करें। और सुनने वालों से जो इस वक्त हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं, आपसे यही इल्तमास है कि आप हमें हमारी वेबसाइट के जरिए से सुनिए, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है उस पे हमारे इस प्रोग्राम का पूरा कंटेंट जा रहा है, जो कुछ हम पेश कर रहे हैं आप सुन पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी टिकटॉक की नशात होती हैं इस पे जो हमारा ये प्रोग्राम जाता है, इसमें हम म्यूज़िक आपके लिए नहीं दे पाते। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट है www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी नशात से लुत्फ उठा सकते हैं, लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, और कोई फरमाइश हो तो उसके लिए आप हमें स्टूडियो के नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 ब्रेडफोर्ड 01274306677 है स्टूडियो का फोन नंबर। फयाज साहब, आपको भी इन नशात में खुश आमदेद कहते हैं। जितने भी इस वक्त हमारे साथी पाक इटली न्यूज उर्दू वाले दोस्त, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं, आप हमारी लाइव को पसंद कर रहे हैं। और दीगर जितने भी हमारे अहबाब इस वक्त मौजूद हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन हमारे साथ खान आपने ज्वाइन किया है, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और मोहम्मद रियाज साहब, खुश आमदेद आपको भी कह रहे हैं। और आपके साथ हैं सारा, आपको भी खुश आमदेद, आपने हमें ज्वाइन कर लिया। और इरफान हैदर, बहुत शुक्रिया हमारे खुशबू वाले भाई। और अवैस तायर, बहुत शुक्रिया आपका भी। और तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जयान, खुश आमदेद आपको कहते हैं। और शकीला, बहुत शुक्रिया आपका। और चौधरी मोहम्मद, खुश आमदेद आपको कहते हैं। और जितने भी साथी इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, सभी को आज के प्रोग्राम में खुश आमदेद। आइए और हमारी इस बज़ में शामिल हो जाइए। आप सभी से इल्तमास है कि डबल टैप कर लीजिए ताकि आप हमारी ये नशात, हमारी आवाज़ अच्छी तरह सुन पाएं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। उमेर अख्तर, वेलकम। यूनस अहमद, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। अहमद वेलकम। अफजा, आपको खुश आमदेद कहते हैं। और जितने भी इस वक्त हमारे सुनने वाले आ रहे हैं, आप सभी को खुश आमदेद। और अब चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होती है आप सुनने वालों से मुलाकात, जो हमें इस वक्त ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पे सुन रहे हैं।
1: On 1413 AM, DAB+, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets, or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

और सामीन अब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ कई नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए आज की इस महफिल का हिस्सा बनना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप आप सभी जानते हैं 00447-800-599-563, 00447-800-599-563। और आज कल आप जानते हैं कि ये गीत बहुत इसके चर्चे हैं और इस गीत को एक नई जिंदगी मिली है। कौन सा गीत है? सन नहर वाले पुल ते बुला के ते खुरे माई किथे रह गया। बहुत ही खूबसूरत गीत है और आप जानते हैं कि आजकल हर कोई इस गीत का तज़करा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब कोई वादा करे कि हम आएंगे और फिर वो ना आए, वादा करके सजन नहीं आया, उड़ीकों विच रात लंघ गई, तो फिर इस गीत की तो बनती है ना बात कि ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए पेश किया जाए। फिल्म का नाम है डेरा सजना दा। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माई किथे रह गया। आप सभी के लिए गीत पेश कर रहे हैं और जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं टिकटॉक के जरिए, आपसे यही इल्तमास है कि आप हमें वेबसाइट के जरिए से सुनिए ताकि आप हमारी नशात से भरपूर लुत्फ उठा सकें, हमारे पूरा कंटेंट आप समाप्त फरमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हम आपके लिए गीत टिकटॉक पे पेश नहीं कर पाते। तो आपसे इल्तमास है कि आप हमें वेबसाइट के जरिए सुनिए। हमारी वेबसाइट है www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और आइए आपके लिए अब ये खूबसूरत गीत पेश करते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274 3066677।

और सामिन, अभी आप ये गीत सुन रहे थे अशफाक रसूल साहब, बेहद शुक्रिया, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप भी इस वक्त हमें टिक टाक पे आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया मोहतरम। और आप भी इस गीत की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि इस गीत को एक नई जिंदगी मिली है, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माई किथे रह गया। जी माइयों के जो काम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सितम के तू भी हो काबिल, खुदा वो दिन तो करे। और सामीन, अब एक और खूबसूरत गीत हमने क्यों कर रखा है और इंतजार हम कर रहे हैं अपने को होस्ट का। तरन, आप कहाँ हैं और सना आप कहाँ हैं? अगर आप आ रही हैं तो हमें बताइए, आपका इंतजार कर रहे थे स्टूडियो में ताकि कुछ आप हमारी मुआवनत कर सकें स्टूडियो में। और सामीन, अब एक और खूबसूरत गीत आपके लिए पेश कर रहे हैं, आवाज़ है महेंद्र कपूर की, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। लेकिन ये गीत हम आपको मस्त नगमे टिक टाक पे नहीं सुना सकते, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, या अगर आप लोकली रहते हैं तो आप हमारा ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ट्यून कर सकते हैं 1430 AM पर। और अगर आप डेब रेडियो इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें डेब प्लस पे भी सर्च कर सकते हैं BFD एशियन रेडियो के नाम से। आप सभी सुनने वालों को अपनी आज की इस महफिल में खुश आमदेद कहते हैं और आइए अब आपको ये खूबसूरत गीत सुनाते हैं। शायरी है जनाब शायर लुधियानवी की, खूबसूरत गीत आवाज़ महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम है अमराज, मौसीकी है रवि की।

0: और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे। स्टूडियो में रौनक हाल हो चुकी है, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं तो राब हैदर, तरन भी स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारी को होस्ट सना भी मौजूद है। सभी को खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से रंगे महफिल प्रोग्राम। जी तरन, वेलकम, खुश आमदेद आपको। और अब यूं करते हैं कि टिकटॉक पे हमारे किसी सामने मोहम्मद रफ़ी के गीत की फरमाइश की थी कि रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई खूबसूरत गीत सुना दें, तो चलिए रफ़ी साहब का एक खूबसूरत गीत है हम पेश कर रहे हैं। और आपसे यही इल्तमास है कि टिकटॉक पे, क्योंकि हम म्यूज़िक पेश नहीं कर पाते, तो आपसे इल्तमास है कि आप हमें इस वक्त वेबसाइट के ज़रिए सुनिए। अगर आप यूके के बाहर सुन रहे हैं, अगर आप ब्रेडफोर्ड या इसके मज़ाफ़ात में हमें सुन रहे हैं आउटस्कर्ट्स में, तो आप हमें आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर भी रेडियो सेट्स पे सुन सकते हैं, या फिर अगर आप डैब पे हमें सुनना चाहें, कारों में डैब प्लस भी है, आप वहाँ भी हमें सुन सकते हैं, या फिर आप हमें वेबसाइट के जरिए ज़रूर सुन सकते हैं पूरी दुनिया में, www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट। और अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहें तो हमारा ऐप है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो या एंड्रॉयड। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ सना और तरन, आप दोनों की माइक भी खुली हुई है और अपनी अपनी माइक पास से कर लीजिए और सुनने वालों से दुआ सलाम कर लीजिए। जी जी,
1: अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पे। आप यही नशा सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.bradfordasianradio.co.uk पर भी। जी, अगर आप हमारे स्टूडियो पे कॉल करना चाहते हैं और अच्छी सी हमें शेर व शायरी सुनाना चाहते हैं या कोई अच्छी सी गीत की फरमाइश करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पे। सो 01274306677 पर भी।
2: अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आप सबकी प्यारी तरन, आज फिर मैं आई हूँ आपको कुछ दिल की बातें सुनाने एंड सुनने आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग पेश करेंगे हम लोग,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत पेश की आवाज में करेंगे। आप तरन बताइए, बाहर मौसम कैसा है?
2: मुझे मत पूछे, मुझे प्लीज मत पूछे, मुझे आज फीवर हुआ है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: अभी इन्फेक्शन
0: अभी तो देखो, फीवर ना हो तो मजा नहीं आता ना, थोड़ा सा मौसम जब बदलता है तो ये उसके खूबसूरती होती है ना मौसम की, तो आपने इससे घबराना नहीं है,
2: फिर ही पता चलता है कि यूके में ठंड आ गई है।
1: ऐसा ही है।
0: सही सही। और आप सुनाइए।
1: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं और आपकी लाइफ कैसे जा रही है आज?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब खैर खैरियत, सब ठीक ठाक लगे हुए हैं। और अभी टाउन हॉल में गए थे, वहाँ से बड़ा खूबसूरत एक फूलों का जैसे
1: जी, होता बिल्कुल, मैं कल गई थी अपने बेटे के साथ, मैं भी वहाँ से।
0: कैसा लगा आपको वैसे?
1: बहुत खूबसूरत है, ये सब फ्रेश फ्लावर्स
2: बना हुआ था। वो मैंने
1: नहीं देखा, आपको वापसी पे लेके,
0: तरन को अभी क्यों ना हम भेजे,
1: आपको वापसी पे देखा,
0: क्योंकि इस वक्त वहाँ पे
1: रात को तो ज्यादा अच्छा है। और आई थिंक शमीम बाजी भी आई हुई थी, उन्होंने भी,
0: मैंने अभी वो वीडियो भी बना के लाया हूँ, टिकटॉक पे हम पोस्ट करेंगे, तो बहुत ही एक देखने से ताल्लुक रखता है। यू नो कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप बयान नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका देखने से ताल्लुक होता है, तो बहुत ही
1: ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारा लग रहा है।
0: और क्योंकि ब्रेडफोर्ड को कहते हैं ना सिटी ऑफ कल्चर, तो वो मेरे ख्याल में ना जाने कितने कल्चर्स की उसमें अमेज है, शायद सैकड़ों आप कह सकते हो, कितने फूल हैं। और मुझे हैरत इस बात की है कि किस चीज से इन्होंने बनाया होगा, जाहिर हम उसे हाथ तो नहीं लगा सकते।
1: फ्लावर से मैंने रियलिटी में इनकी वीडियो चेक की है, इन्होंने पहले सबसे पहले उसका पैटर्न बनाया था फ्लावर्स का, उसके बाद मैं कल गई थी टाउन में, तो फिर उन्होंने वन बाय वन फ्लावर्स को रखा और आई थिंक अबाउट 20-30 पीपल वहाँ पे थे मिडल ऑफ द प्लेस में,
0: जुड़ने में okay,
1: जी बिल्कुल मिडल में, और वो सब फ्रेश फ्लावर के साथ वो बना रहे थे।
0: अच्छा, ये ताजा फूल है, फ्रेश
1: जी,
0: फ्लावर से?
1: जी बिल्कुल, ये फ्रेश फ्लावर से बनाया गया, ब्रेडफोर्ड में फ्रेश फ्लावर का कारपेट है ये,
0: और पूरे यूके में अपनी बिल्कुल एक यूनिक पहचान ब्रेडफोर्ड दे रहा है, और ये भी उसी की एक आकाशी है।
1: बिल्कुल,
0: हमें अपने ब्रेडफोर्ड पे नाज है,
2: धीरे धीरे ग्रो कर रहा है,
0: सिटी ऑफ कल्चर इसे यूं ही नहीं कहते, ये अकदार है सिटी ऑफ कल्चर का
1: बनाया है। इसमें इंग्लिश पीपल भी शामिल थे, हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी काफी ज्यादा थी, जिनकी मैंने वीडियो चेक किया बना रहे थे, और एक एक फ्लावर्स को रख के उन्होंने ये कारपेट रेडी किया है।
0: कितना मुश्किल है,
1: ब्यूटीफुल,
0: हम तो सिर्फ एक नजर देखते हैं, लेकिन आप देखिए कि बनाने वालों को कितना वक्त लगा,
2: कितनी मेहनत लगी है,
0: कितनी मेहनत। आप अगर अकेले भी बना सकती थी तरन, अगर आप बनाती तो?
2: ऑफ कोर्स मैं तो बना सकती हूँ।
0: कितनी देर में आप बना लेती?
2: उन्होंने तो बहुत टाइम लगा दिया, मेरे तो थोड़े टाइम की बात थी।
1: क्योंकि
2: ये हमारे इंडिया का कल्चर भी है,
1: ये सब फ्लावर्स के थ्रू बनाया गया,
2: क्योंकि ये हमारे इंडिया का कल्चर भी,
0: बिल्कुल ये हमारा कल्चर,
2: रंगोली
0: हमारी तहजीब है, हमारी सकाफत है।
1: अच्छा, मुझे पहले ऐसे लगा कि शायद कोई इंडियन की रंगोली टाइप की, क्योंकि मैंने वो ड्रामास में देखा था इसको ना, लेकिन जब मैं करीब गई और मैंने जब एक इंग्लिश गाय था उससे पूछा मैंने गोरे से, मैंने कहा ये क्या है, तो कह रहा है दिस इज फ्रेश फ्लावर।
0: माशाल्लाह,
2: अभी मेरे दिल को कुछ हो रहा है, मुझे कि मैं अभी उठ के चली जाऊं।
1: अभी आपको दिखाते हैं और आपके अच्छे चित्रे भी बनाते हैं और दुनिया वहां पे खड़ी हुई थी।
0: बिल्कुल, अभी भी मैं, क्योंकि प्रोग्राम मैंने थोड़ा ताखिर से शुरू किया, 10-15 मिनट मैंने कहा एक दो छोटी छोटी वीडियोज बना के अपलोड करते हैं, तो मैं वहां पे मौजूद था। क्या इस वक्त भी अपनी, यानी कि आप यूं कह लेंगे इंग्लिश कम्युनिटी के साथ साथ एशियन की बहुत बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है, हमारे
1: है।
0: सभी हमारे हम वतन वहां पे मौजूद है, तरह तरह की वीडियोस बन रही हैं,
1: लाइव कम्युनिटी वहां पे मौजूद थी जी, कल भी थी, आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल डेफिनेटली थी, यस्टरडे वाज।
0: और अब यूं करते हैं कि एक खूबसूरत गीत अपने सुनने वाले जो इस वक्त रेडियो के जरिए हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक खूबसूरत गीत हम पेश कर रहे हैं, और यूं करेंगे कि गीत के बाद आपसे बातचीत रहेगी। आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: और सामिन, अभी हमारे किसी सामिन ने इस गीत की फरमाइश की थी कि रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई खूबसूरत गीत पेश करें, तो रफ़ी की आवाज़ क्या ही जादू भरी आवाज़ थी, और मैं कहता हूँ कि ऐसी आवाज़ सदियों में पैदा होती है जैसी रफ़ी की आवाज़ थी। खूबसूरत गीत आपके लिए पेश किया। अभी हमारे पास तकरीबन 2 मिनट्स हैं सना और तरन, उसके बाद हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम सभी सुनने वालों से इल्तमास करते हैं कि सभी आ जाइए हमारी जो
1: लाइव पे
0: सुंदस हैं, वो भी शायद हैं या नहीं है,
1: अभी नहीं आई है,
0: सुंदस को भी आवाज दे रहे हैं हम, और साथ में
1: एएमके भी अभी तक नहीं आई,
0: वो भी नहीं आई, वो भी बड़ी अच्छी शायरी सुनाती हैं, उन्हें भी खुश आमदेद। तरन, आप पिछले प्रोग्राम में जल्दी चली गए, आप क्या नाम है इनका, हीर, आप पिछले प्रोग्राम में जल्दी चली गई थी, क्या हुआ था?
1: सना नहीं थी यहाँ पे इसीलिए।
0: हाँ,
1: वो कहती है मुझे बिल्कुल मजा नहीं आपके बिना प्रोग्राम का, इन्होंने मुझे स्पेशल कॉल करके बोला था।
0: जी जी, तो ये है कि अभी हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होती है आप सुनने वालों से मुलाकात। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, स्टूडियो का नंबर आप बता दीजिए।
1: जी सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। आप यही नशरात सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी, www.bradfordasianradio.co.uk पे। और इस वक्त अगर आपको हमारे स्टूडियो पे कॉल करनी है तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर।
0: और चलिए हम ब्रेक पे चलते हैं।
2: 10 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange, additional third party. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes

0: जी सामिन, जैसे आपको पता है कि हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में रंगे महफिल में हम आ चुके हैं और आप सभी को इस वेलकम वेलकम करते हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पे। अगर आप हमारे स्टूडियो पे कॉल करना चाहते हैं और अच्छा सा गीत पेश करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर सकते हैं 01274306677 पर। जी हाँ, अगर आप हमें वेबसाइट पे भी सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.bedfordasianradio.co.uk। और अगर आप हमें यूके से बाहर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलाइएगा, कोड मिलाना ज़रूर याद रखिएगा 00447800599563 पर। तो जी हमारे साथ इस वक्त लाइव पे हैं फ्रांस से हीर, और हीर आपको हम वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। तो क्या आप हमारे सामने इनको क्या सुनाना पसंद करेंगी?
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ पे सुनाना चाहूंगी, कहते हैं कि कोई मेरा इमाम था ही नहीं,
2: कोई मेरा इमाम कोई था ही मेरा नहीं।
1: था ही नहीं, मैं किसी का गुलाम था ही नहीं।
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: तुम कहाँ से बुत उठा लाए,
2: तुम कहाँ से बुत उठा लाए,
1: हाँ हाँ, तुम कहाँ से बुत उठा लाए, इस कहानी में राम था
2: ही नहीं। क्या कहने, और हीर मुझे इससे बड़ा क्लासिक शेर याद आ जाता है ना कि बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। सूरज पे लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सूरज पे लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है।
1: अल्लाह की मर्जी है बेशक। और कहते हैं कि जिस कदर शोरे आबो गुल था यहाँ, जिस कदर शोरे आबो गुल था यहाँ, इस कदर एहतमाम था ही नहीं।
2: वाह वाह,
1: हमने इस वक्त भी मोहब्बत की,
2: हमने उस वक्त भी मोहब्बत की,
1: हमने इस वक्त भी मोहब्बत की, जब जब मोहब्बत का नाम
2: था ही नहीं। क्या कहने,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: इसलिए साध ली थी चुप मैंने, इसलिए साध ली थी चुप मैंने, क्योंकि इससे बेहतर कलाम
2: था ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: वक्त ने ला खड़ा किया इस जा, वक्त ने ला खड़ा किया इस जा, जो जो हमारा मुकाम
2: था ही नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब।
1: तू कहाँ रास्ते में आ गई है, तू कहाँ रास्ते में आ गई है, जिंदगी तुझसे काम था ही नहीं।
2: बहुत
0: क्या बात है। मस्जिद नकवी ने हीर आपके लिए भेजा है, लोग मुझको वली समझते थे पर मैं इबादत गुजार था ही नहीं। क्या बात है, ये आपके साथ मुकाबले में आ सकते हैं हीर।
1: नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कहते हैं कि उड़ रहा हूँ खुली फिजाओं में,
2: उड़ रहा हूँ खुली फिजाओं में,
1: रहा हूँ खुली फिजाओं में, जैसे मैं जेरे दाम था ही नहीं, इसलिए खास कर दिया गया इश्क, इसलिए खास कर दिया गया इश्क, आम लोगों का काम
2: था ही नहीं। फिर से पढ़िएगा हीर, क्या कहने, वाह।
1: कहते हैं कि इसलिए खास कर दिया गया इश्क, इसलिए खास कर दिया गया इश्क, आम लोगों का काम था ही नहीं।
2: बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने,
1: थैंक यू,
2: वाह।
0: तो आप भी, आपको बोल रहा है बार बार बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं इसको कैमरे से कैसे करूँ, हमने माइक आपके साथ ज्वाइन किया भाई, और ये बार बार माइक मेरे मुंह के आगे लेके ताकि अभी मैं कुछ
2: अच्छा
0: जी जी, आप बोलो ना आंटी को कि बहुत
2: है। हीर आपने अपनी गजल कंप्लीट कर ली है,
0: बोलो ना, बहुत खूब
2: जी जी। अच्छा मैं भी कुछ अशआर सुनाता हूँ कि ना सही, ना सही और पर इतनी तो इनायत करते, ना सही और पर इतनी तो इनायत करते, अपने मेहमान को हंसते हुए रुखसत करते, ना सही और पर इतनी तो इनायत करते, अपने मेहमान को हंसते हुए रुखसत करती है। और मुबहम अल्फाज में हमने तुझे क्या लिखा है, मुबहम अल्फाज में हमने तुझे क्या लिखा है, तू कभी रूबरू आता तो वजाहत करते, और हमने गम को भी मोहब्बत का तसलसल जाना, हमने गम को भी मोहब्बत का तसलसल जाना, हम कोई तुम थे कि दुनिया से शिकायत करते, हमने गम को भी मोहब्बत का तसलसल जाना, हम कोई तुम थे कि दुनिया से शिकायत करते। क्या कहने,
1: क्या कहने, बहुत।
2: और हमने सूखी हुई शाखों पे जी जी, और हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے. اور کی اور اس غزل کا سب سے پیارا شعر کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے.
1: اور یہاں پہ آپ لوگوں کو جوائن کیا ہے عارف صاحب نے, بہت ہی اچھے انسان ہیں, میری لائف پہ اکثر آتے تھے, ابھی مجھے نہیں پتا کہ یاد رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا, بٹ بہت ہی خوبصورت شاعری کرتے ہیں.
2: جی جی آ جائیے عارف صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
0: السلام علیکم عارف جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. طارق بھائی آپ نے ہمیں کہاں سے جوائن کیا ہے؟
3: ارے میں بیسیکلی ہم فرام لاہور پاکستان, اور لیکن میں جرمنی میں رہتا ہوں.
0: جرمنی میں رہتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. تو آپ ہمیں کچھ سنانا پسند کریں گے ہماری لائف پہ آ کے؟
3: چلیں میں ایک چیز سنا دیتا ہوں.
2: آواز پیچھے سے نہیں آنا چاہیے پلیز.
0: جی آپ کلام پیش کریں پلیز.
3: چلیں آپ سب کی نظر کے
2: کیا پیچھے سے آواز نہ آئے.
0: جی جی
2: کسی کا
4: پلیز پیچھے سے میوزک نہ کریں,
2: پلیز میوٹ کر دیجیے پیچھے سے.
0: ہیلو کیپشن.

0: और जी हाँ सामीन, अब रुखसार चौधरी साहब भी टिकटॉक पे हमें
1: जी,
0: रुखसार चौधरी साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ टिकटॉक पे हमें जानकार
1: अभी
0: लिया
1: तक
0: उन्होंने
1: नहीं आए
0: जी,
1: हैं।
0: वो उन्होंने स्टूडियो पे कॉल किया तो मैंने कहा आप टिकटॉक के जरिए से आ जाइए
1: जी बिल्कुल,
0: ताकि आज उनकी
1: अभी तक हम आरिफ साहब को सुन लेते हैं और
0: जी
1: उसके
0: जी
1: बाद हम रुखसार चौधरी
0: जी जी आरिफ साहब आप सुनाइए।
1: आरिफ जी प्लीज आप हमें अपना कलाम पेश करें प्लीज।
0: जी जी इनायत कीजिए।
2: सुनाता हूँ एक को,
0: ये पीछे से आवाज आपकी कोई आ रही है, प्लीज कोशिश करें ये आवाज ना आए क्योंकि स्टूडियो पे लाइव जा रहा है इस वक्त रेडियो स्टेशन पे, तो ये पीछे वाली आवाज ना।
2: अभी जी हम आपको नहीं चाहिए
0: जी
1: बोले
0: जी जी आप सुनाइए।
2: मैंने ऐसे बिजी मान किया हुआ था।
0: नहीं वो ना आन कीजिएगा प्लीज, हम वो नहीं।
2: चले फिर उससे उसके बगैर ही सुनाता हूँ की एक शेर आपकी नजर के
0: इनायत कीजिए।
2: उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है।
0: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह वाह। वो कहते हैं ना कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुश गुमान ना हो, मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुश गुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं।
2: आए हाय क्या कहने कि वो जालिम को भी जालिम जो कहोगे तो मरोगे। खामोश यहाँ दुख भी सहोगे तो मरोगे।
0: मरोगे क्या कहने,
2: जिस देश के हाकम हैं फक्त जर के पुजारी।
0: वाह वाह,
2: उस देश में आजाद रहोगे तो मरोगे।
0: बहुत खूब,
1: वाह वाह।
2: बोलोगे तो मुमकिन है जुबान काट ली जाए।
0: आहा,
2: हाकिम को अगर बात करोगे तो मरोगे।
0: तो मरोगे, बहुत खूब बहुत खूब। जीने नहीं देते मुझे, मरने नहीं देते, ये अहले जहां कुछ भी तो करने नहीं देते। बातें तो बहुत करते हैं उस पार की, लेकिन कश्ती कोई दरिया में उतरने नहीं देते।
1: जनाब
2: नहीं देते, मुर्दा से जमीरों का फक्त बोझ उठाकर। मुर्दा से जमीरों का फक्त
0: बोझ
2: उठाकर, इस कैद में तुम जिंदा जलोगे तो मरोगे।
0: बहुत
2: मकता इसका है कि इस शहर में सारे ही मुसलमान हैं साजिद।
1: क्या कहने,
2: इस शहर में सारे ही मुसलमान हैं साजिद, इस शहर में सच बात करोगे तो मरोगे।
0: तो मरोगे क्या कहने, क्या कहने,
2: इस शहर में सच बात करोगे तो मरोगे।
0: क्या कहने, क्या कहने।
2: एक उस मुख्तलिफ थोड़ा सा सुना दे।
0: जी जी बहुत अच्छी गजल थी आपकी, माशाल्लाह।
2: एक एक अक्सर मुझसे कहती थी
0: जी जी,
2: अक्सर मुझसे कहती थी वफा है जात औरत की, मगर जो मर्द होते हैं बड़े बेदर्द होते हैं।
1: क्या कहने?
2: सुनो तुमको कसम मेरी रवायत तोड़ देना तुम।
0: वाह वाह,
2: ना तन्हा छोड़ के जाना, ना ये दिल तोड़ के जाना।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
2: मगर फिर यूं हुआ मोहसिन, मुझे अनजान रास्ते पर अकेला छोड़कर उसने, मेरा दिल तोड़कर उसने।
0: हाँ हाँ,
1: क्या कहने
0: आपका,
2: छोड़ दी उसने।
0: जी जी,
2: वफा है जात औरत की रवायत तोड़ दी उसने।
0: बहुत खूब,
2: रवायत तोड़ दी उसने, सलामत रहे।
0: जी जी बहुत शुक्रिया आपका, अदा करते हैं, तशरीफ लाते रहिएगा।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे।
0: और रुखसार चौधरी साहब को
1: जी, मैंने रुखसार चौधरी साहब को इनविटेशन भिजवा दिया है। रुखसार साहब प्लीज, अगर आपने हमें ज्वाइन करना, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ। जी मोहसिन नकवी साहब, आप प्लीज अपनी दूसरी आईडी से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हसन शाह जी को 3 शेयर व्हाट्सएप किए हैं जी, चेक करें आपको व्हाट्सएप किए हैं।
0: जी जी मैं अभी देख रहा हूँ जी, इन्होंने
1: ये कह रहा पश्तो में दा गजल दी दा कचरा दी,
3: मतलब
1: बस पश्तो में बस बोल दिया उन्होंने।
0: अच्छा,
1: बहुत प्यारी गजल है।
3: ओके, पश्तो में ना बोले
0: प्लीज। जी जी, और यूं करते हैं कि आपने जो अशार भेजे हैं बेहद शुक्रिया आपका अदा करते हैं। अपने हिस्से की मोहब्बत भी उसे सौंप कर, अपने हिस्से की मोहब्बत भी उसे सौंप कर, हमने इश्क में कोई भी कमी ना रखी। बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने। और अगर आप भी हमें टिक टॉक के जरिए से ज्वाइन करना चाहें तो आप भी आ जाइए, आपकी भी आवाज हम सुन लें। और रुखसार चौधरी साहब आपसे इल्तमास है कि आप आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।
1: जी आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दें, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ एज अ गेस्ट।
0: جی جی
1: سلامت رہیں.
0: اور یوں کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے اگلے سننے والے آتے ہیں، دیگر سننے والوں کے لیے گیت جو اس وقت ہمیں ریڈیو پہ سن رہے ہیں.

0: और सामिन इस वक्त नवाब साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, इन्हें भी खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो,
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह
1: ठीक
0: का शुक्र है। आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं?
1: यार, मैं कराची से हूँ
0: अच्छा,
1: और सैयद आतिफ बुखारी मेरा नाम।
0: शाह साहब खुश आमदेद, वेलकम। जी जी
1: थैंक यू सो मच।
0: जी जी तो सुनाइएगा आज के इस प्रोग्राम में क्या
1: अबैदुल्ला
0: शामिल करेंगे। जी
1: अलीम की गजल है,
0: जी जी खूबसूरत शायर।
1: वो मैं
0: जी जी इनायत कीजिए,
1: आप सबके नाम।
0: इनायत।
1: थैंक यू सो मच।
0: जी,
1: बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स।
0: आहा, क्या कहने, खूबसूरत गजल।
1: बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स, हुआ चराग तो घर ही जला गया एक शख्स।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: घर ही जला गया एक शख्स।
0: आहा,
1: तमाम रंग मेरे और सारे हाव मेरे,
0: आहा
1: फसाना थे के फसाना बना गया एक शख्स।
0: बहुत खूब।
1: मैं किस हवा में उड़ू, किस फजा में लहराऊं, दुखों के जाल हर एक सु बिछा गया एक शख्स।
0: बहुत खूब,
2: बहुत खूब।
1: और पलट सकूं ही ना आगे ही बढ़ सकूं, जिस पर मुझे ये कौन से रास्ते लगा गया एक शख्स।
2: क्या बात है।
1: पलट सकूं ही ना आगे ही बढ़ सकूं, जिस पर और मोहब्बतों ने किसी की भुला रखा था उसे।
0: वाह वाह,
1: मोहब्बतों ने किसी की भुला रखा था उसे, मिले वो जहम के फिर याद आ गया एक शख्स। वो महताब था, मरहम बदस्त आया था, मगर कुछ और सिवा दिल दुखा गया एक शख्स।
0: बहुत अच्छे,
2: बहुत अच्छे।
1: और मोहब्बतें भी अजब, उसकी नफरतें भी कमाल।
2: क्या कहने,
1: हासले वजल शेर।
0: जी जी ना,
1: मोहब्बतें भी अजब, उसकी नफरतें भी कमाल, मेरी ही तरह का मुझ में
0: समा गया एक शख्स। क्या कहने। और उबैदुल्ला अलीम का ये खूबसूरत शेर है ना इसी हवाले से कि मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए।
2: वाह वाह
1: जी
0: जी जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपका अदा करते हैं। आप, आपने खूबसूरत गजल आज के इस प्रोग्राम में शामिल की, बहुत शुक्रिया।
1: जी
0: जी जी,
1: खुला ये राज कि आईना हाना है दुनिया। खुला ये राज, खुला ये राज के आईना हाना है दुनिया, और उसमें मुझको तमाशा बना गया एक शख्स।
0: बहुत अच्छे,
1: तमाशा बना गया एक शख्स।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मोहतरम, सलामत रहे। अगली अगली महफिल तक आपसे इजाजत चाहेंगे, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।
2: बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह हाफिज।
0: और रजिया सामीन अभी कराची से हमारे साथ थे, बहुत ही मोहतरम हमारे सामने, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत गजल सुनाई उबैदुल्ला अलीम की। और हमारे साथ सना और कुछ सामने मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन यूं कह लीजिए कि सात सात आठ मिनट रहते हैं,
3: तो फिर एक गजल सुना दूं मैं।
0: जी जी, आप सुनाइए।
3: बस एक शख्स ही कुल कायनात हो जैसे, बस एक शख्स ही कुल कायनात हो जैसे, नजर ना आए तो दिन में
0: भी रात हो जैसे। क्या कहने, फिर से पढ़िएगा ये शेर।
3: बस एक शख्स ही कुल कायनात हो जैसे, नजर ना आए तो दिन में भी रात
0: हो जैसे।
3: मेरे लबों पे तबस्सुम मौजज़न है अब तक, मेरे लबों पे तबस्सुम मौजज़न है अब तक, कि दिल का टूटना जरा सी बात हो जैसे। शबे फिराक मुझे आज यूं डराती है, शबे फिराक भी मुझे आज यूं डराती है, तेरे बगैर मेरी पहली रात हो जैसे।
4: वाह, दिल को जाके लगा।
3: उसकी याद की ये भी एक करामत है, उसकी याद की ये भी एक करामत है, हजार मील पे होके भी साथ हो जैसे।
0: क्या कहने, क्या कहने,
4: क्या कहने।
3: तेरा सलूक मुझे रोज जख्म ताजा दे, तेरा सलूक मुझे रोज जख्म ताजा दे, किसी को पहली मोहब्बत में
0: मात हो जैसे। क्या शेर है, वाह वाह वाह।
3: हमारे दिल को क्यों मांगे ना आया अदम, हमारे दिल को कोई मांगने ना आया अदम किसी गरीब की बेटी का
0: हाथ हो जैसे क्या कहने क्या कहने क्या ये शेर फिर से पढ़िएगा आदम का खूबसूरत वाह वाह
3: हमारे दिल की कोई मांगने ना आया अदम हमारे दिल को कोई मांगने ना आया अदम किसी गरीब की बेटी का
0: हाथ हो जैसे क्या कहने क्या कहने
3: शख्स ही कुल कायनात
0: कायनात हो जैसे
3: इसी कहती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा
0: बहुत ही अच्छी
3: हमारे प्रोग्राम का
0: नहीं अभी हमारे पास हैं तकरीबन एक दो कॉलर हम ले सकते हैं अगर हमारे सुनने वाले
3: इस वक्त हमारे हीर आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे तरन आप क्यों नहीं कुछ सुना रहे हो हीर ने मुझे स्पेशल मैसेज किया
0: एएमके को मिस कर रहे हैं शायद उनका एएमके नाम था एक दो प्रोग्राम्स में आई बहुत अच्छा उन्होंने कलाम सुनाया तो आज न जाने
3: अब्दुल अहमद रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन जी अब्दुल अहमद आ जाए आपको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम
0: जी जी
5: वालेकुम अस्सलाम मैम
3: कैसे हैं आप ठीक है
0: जी आप कहाँ से हमें जान कर रहे हैं
5: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप ठीक हैं
3: अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल भाई आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया
0: अच्छा रावलपिंडी पाकिस्तान से
3: माशाल्लाह
0: कंटेंट रूम के शहर से
3: हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हमें पाकिस्तान में भी सुना जाता है
5: पाकिस्तान में रावलपिंडी
0: माशाल्लाह माशाल्लाह तो क्या सुनाएंगे हमारे पास वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है आज के इस प्रोग्राम में जी जी सुनाइए कुछ
5: सर सुना दो
0: जी जी इनायत कीजिए
3: अनायत कीजिए कलाम पेश कीजिए
0: जी जी
5: चलें सर ये कलाम सुना देता हूँ
0: जी जी इनायत कीजिए
3: अनायत कीजिए
5: एक सर मैं एक प्लीज मैं डोर बंद कर रहा
0: हूँ जी जी
3: जी जी बिल्कुल
0: जी जी और सामीन अगर आज के इस प्रोग्राम में आप भी तशरीफ लाना चाहें तो कॉल कर सकते हैं हमारे पास तकरीबन 5 मिनट्स हैं स्टूडियो का नंबर है 01274306677 व्हाट्सएप है 00447-800-599-563 और जी अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो हमारे पास वक्त कम है आप सुना दीजिए
3: जी
0: जी मेरे ख्याल में ये चले गए तो इस वक्त
5: जी मैं नहीं सुना पाऊंगा
0: जी जी कोई मसला नहीं बहुत शुक्रिया जी हीर आप सुनाइए
5: तो मैं एक मुबारक का सुना कर
0: जी जी एक शेर सुना दीजिए
3: जी आरिफ जी बिल्कुल तशरीफ लेके आइए जी अनायत
1: पहले मैं एक सुना देता हूँ कि मुबारक सिद्दीकी लिखता है मेरा मेरे उस्ताद मोहतरम भी और
0: जी जी
1: बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे कि ये दुनिया है यहाँ पर दास्ताने मार देती है
0: ये दुनिया है यहाँ पे दास्ताने मार देती
1: है ये दुनिया है यहाँ पर दास्ताने मार देती है यहाँ यहाँ रस्मों और रिवाजों की चट्टाने
0: मार देती है बहुत खूब
1: यूं परदेश में बैठे हुए एक दिन ख्याल आया परिंदों को बहुत लंबी उड़ाने
0: मार देती है बहुत खूब बहुत खूब
3: बहुत खूब
1: तेरी आंखों की मस्ती देख कर वास की याद आई वो कहता था शराबों की दुकानें
0: मार देती हैं
1: कई गहरों के मीठे बोल सुनकर जान पड़ती है कई अपनों की जहरीली जुबानें
0: मार देती हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे
3: बहुत खूब
1: मुझे मरते हुए कहने लगी हवा की एक बेटी
0: क्या कहने
1: यहाँ रिश्ते निभाने की थकाने
0: मार देती है बहुत अच्छे बहुत खूब
1: सब बेटियों की नजर सब बेटियों की नजर सब गौर से सुनिए
0: जी जी इनायत
1: बेटे ही होते हैं हकीकी प्यार के वारिस
0: हाँ हाँ हाँ यहाँ बेटे ही होते हैं हकीकी प्यार के वारिस
1: अगरचे बेटियाँ खिदमत में जाने
0: मार देती है क्या कहने क्या कहने वाह वाह वाह वाह बहुत
1: बेटे ही होते हैं हकीकी
0: प्यार के वारिस
1: अगरचे बेटियां खिदमत में जाने मार देती हैं
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे
3: बिल्कुल सच कही आपने
1: मुबारक एक तो मौजू तुम्हारे जान लेवा है
0: हाँ हाँ हाँ हाँ मुबारक एक तो मौजू तुम्हारे जान लेवा है
1: मुबारक एक तो मौजू तुम्हारे जान लेवा है फिर इस पर दर्द से लबरेज ताने
0: मार देती हैं बहुत अच्छे
1: है ये दुनिया है यहाँ पर दास्ताने मार देती हैं यहाँ रस्मों रिवाजों की चट्टानें
0: मार
1: देती हैं। थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा, तशरीफ लाते रहिएगा मोहतरम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
3: जी चौधरी नदीम साहब ने हमें ज्वाइन कर दिया है, हसन भाई
0: जी जी, हमारे पास वक्त कम है, अगर वो
3: आना लाइफ पे हैं आप बस
0: नहीं, यूं करते हैं कि एक हम अपने किसी एक, चलिए उन्हें थोड़ी देर होल्ड पे रखिए, हम सुनने वालों से ऑन द एयर रेडियो से इजाजत ले लें। और समीन ये तो था आज का रंग महफिल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, उम्मीद करते हैं कि आज की ये महफिल, आज की ये बज़्म आप सुनने वालों को पसंद आई होगी, जिसमें आप आते हैं तशरीफ़ लाते हैं खुशी होती है। रुखसार चौधरी साहब आप कम से कम हमें टिकटॉक पे ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, माजरी चाहता हूँ कि आपसे स्टूडियो में बात नहीं हो पाई, कुछ क्वालिटी लाइन की अच्छी नहीं थी, तो आप टिकटॉक पे तशरीफ़ लाइएगा, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अब इसी के साथ ही सना आप भी इजाजत ले लीजिए, तरन आप भी, और
3: उम्मीद करते हैं कि आज के रंगे महफिल के प्रोग्राम को आपने बहुत इंजॉय किया होगा और हमारी शेर शायरी हमारे गीत से आपने बहुत लुत्फ़ानंदोज होंगे। तो जी अभी मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूँ आपकी सना खान और ये है हमारी तरन, तरन आप भी,
0: तरन माइक के पास आ जाइए। जी
4: जी आप सभी का साथ और प्यार हमेशा याद रहेगा एंड इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ, अल्लाह हाफिज।
0: आप भी इज्जत ले लीजिए,
3: जी अल्लाह
0: हाफिज, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सामीन आप इसी के साथ ही अपने मेजबान सैयद हसन को आज का रंगे महफिल समेटने की इजाजत दीजिए, बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।

0: ADN Bobby आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब का फिर से घर सजाइए. नंबर मिलाइए 07414260078.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है.
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए. आज ही तशरीफ लाइए. ओपन 7 डेज. बेल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA. फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन.
0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए.
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं.
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है.
0: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY.
3: टेलीफोन 01274731555. मंगला केटरिंग सर्विसेज UK.
0: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर.
3: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं.
0: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए.
0: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678.
0: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं.
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह
7: BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: on 01274306567 behind Shell petrol station.
1: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
1: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
2: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
3: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुक कीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार

0: आपकी आवाज खूबसूरत है, क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team. You're on 01274 306677 or 07800

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer...
10: Okay.
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients?